और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे अल्लाह चाहे और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया, बेशक वो तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं आमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो।

और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं।

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
0: This program is brought to you by
3: Bank Islamani Laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
4: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
5: Saria, Garder, Tier, Angle, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ain Rang Vagera, Bazar Khan Bariya Dastyab Ain
4: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani
5: Raptilai Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ain 02424601000
6: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
7: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधारो रुकजी न सघी। पेट्रोल 3.05 रुपया ऐं डीज़ल 5.37 रुपया फ़ी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओं अघु 370.80 रुपया ऐं डीज़ल जो नओं अघु 398.80 रुपया फ़ी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघ 11 सितंबर लाइ हूंदा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी खत्म करण बाबति फैसलो न करे सघी। ॻाल्हियुनि जे वे दौर दौरान जमात इस्लामी खां वधीक 3 ॾींहनि जी मोहलत घुरी वरिती। जमात इस्लाम जा लाहौर, पिशावर, कराची ऐं सखर समेत ॿियनि शहरनि में धरणा जारी। हाफिज़ नईमुल रहमान चयो आहे त हुकूमत पेट्रोलियम वज़ारत ऐं IP सां ॻाल्हाइण ऐं मोहलत घुरी आहे। हुकूमत जो रवैयो दुरुस्त न थियो त लांग मार्च जो ऐलान कयो वेंदो। सॾु खां पोइ कारकुन सॼे मुल्क मां निकिरंदा ऐं हुकुमराननि खे पोइ ते धिके छॾींदा। वफ़ाक़ी हुकूमत जो नवनि सूबनि वारे मामले ते क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बहस करण जो ऐलान। पार्लियामेंटी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त सूबनि वारे मामले ते बहस जो असल हंधु पार्लियामेंट आहे। अक्टूबर में क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलासनि दौरान नवनि सूबनि वारे मामले ते बहस करायो वेंदो। इस्लामाबाद खे धार सूबो ठाहिण ते का बि ॻाल्हि ॿोल नाहे थी। राजधानी वारे शहर खे सूबो ठाहिण बदिरां उते हिकु नओं गवर्नेंस मॉडल ठाहिण जूं तयारियूं हली रहियूं आहिनि। मीरपुर ख़ासि भरिसां जमड़ाव केनाल मां निकिरंदड़ शाख जो रेगुलेटरी टुटी पियो। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते घारा, शाख में पाणीअ जो दॿाउ, पाणी टंडो आदम रोड ते पहुची वियो। ॻोठ ज़ाहिदाबाद शेर मोहम्मद थईम ऐं उनर ॻोठ में बि दाख़िल। ॻोठाणनि मूजिब आपाशी अमलो शाख खे बंदि करण लाइ पहुतल आहे, पर नॉन टेक्निकल हुजण सबबि शाख बंदि पई थिए। असिस्टेंट कमिश्नर खे फौरी तौर अमलो वठी शाख खे बंदि कराइण जी हिदायत। जेकमाबाद में लेडी कांस्टेबल पारां मुबैना तौर ज़हर पी आपघात जी कोशिश। होल्डिंग कैंप ते ड्यूटी दौरान कांस्टेबल ज़ैनब लाशारी मुबैना ज़हरीली शइ पी आपघात जी कोशिश कई। पुलिस जो चवण आहे त लेडी कांस्टेबल खे सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो, जेका अञा ताईं होश में न अची सघी आहे। संदसि हालत ख़तरे खां ॿाहिरि आहे। ऐं उॿावड़ो भरिसां गुडू लिंक रोड ते पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में मुबैना मुक़ाबले दौरान ॿ ॾोहारी रशीद अहमद मज़ारी ऐं ज़फ़र अली मज़ारी ज़ख़्मी हालति में गिरफ़्तार। इलाइक़े में चौबोल आहिनि त गुज़िरियल राति उन्हनि ॿिन्ही चोरनि जूं मेहूं चोरी कयूं हुयूं, जिन खे उॿावड़ो पुलिस गिरफ़्तार करण बाद हाफ फिराए कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड M सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।
6: ਹੁਜੜਾ ਕਾਲਜ

मरणी नाहे डाल इन्हें जो शाहिद मिठड़ा डाल इन्हें जो शाहिद मिठड़ा।

0: आई अदी अज तो डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थे अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
0: मां भी वही चवा उनके ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027

0: निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

रातो दिहारू हमें कया वहमन वाहेरा अची हूं दहमल चले दिहा दहा भेरा।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराक़्ची जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां फोन ते राबतो किथे जी सूरत हाल समेत मुनवारनि पुछनि।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करने वाले सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द कर छी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट मौजूद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप से फोन ते राबतो करे हुसैन खिलाफ कार्रवाई जो दरख्वास्त रद्द कई हुई जेका ट्रंप रद्द करे छी है। ट्रंप इंतजामिया मौजूद अमेरिका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कंदो। वाशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो ना है।

केपी जेल है, के कोर में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन चार दहशत गर्द मार्जी वेल दहशत गर्द में अफगान खारजी अब्दुल्ला भी शामिल जरियन मौजूद मार्जी वेल अफगान दहशत गर्द अब्दुल्ला साद वालिद गुलाम गोसाली अफगानिस्तान के सूबे लोगर जो रहवासी हो खारजन से गड कम कंदो हो। सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार पारा अदालती कार्रवाई जो बायकाट वकील अगवान सिंध के टोड़ने वाली साजिश के कदें भी कामयाब थियण न डींदासीं सिंध एक है हमेशा एक रांदी सिंध के विरहण वारे समूर बयान की मजम्मत क्यूं था।

ब्रियासिटीअ में महीनो अॻु नारीअ जे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल थियण जो इंकशाफ़। जवाबदार मामो थाणे ते पेश। ॻोठ आॾो खान ॾेहो में मसमात नेहा खे घुटा ॾेई क़तल कयो वियो हो। जवाबदार मामे राजा थाणे ते पहुची एतिराफ़ कयो त हुन नारीअ खे संदसि वारिद अकरम ॾेयाव सां गॾिजी नौजवान अलारिनो सां कारी करार ॾेई घुटा ॾेई क़तल कयो। पुलिस सरकारी मुदत में केस दाख़िल करे वधीक जवाबदारनि जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी। घोटकी में ॻोठाणे ते तशद्दुद ऐं तज़लील वारे केस में गिरफ़्तार SHO ज़मानत रद्द थियण ते गिरफ़्तार। घोटकी जी अदालत अॻूणे SHO काबिल भयो जी ज़मानत रद्द करे गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। पुलिस काबिल भयो खे अदालत मां गिरफ़्तार करे जेल मुंतकिल कयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करयो।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर। 03000310509, 03000310509।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोनी, अज त डाढी खुश थी लगे।
2: हां साईं, गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थेन ता, गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
1: वाह सोनी, वाह वाह जी, गाल बुदाए।

0: ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. Isi liye sona laya hai NPS. तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: में बाउंड्रीज चेंज करनी है, उसका कोई आईनी तरमीम चाहिए हो सकती है।

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटर

0: इस जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जह में मिले थी मोटरसाइकिल की कार कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03000 3105109।
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान डोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐ गोश्त वधाए अम्हां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐ जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000338569।
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03008-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो राबते लाए 03-01-96-8051।
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खसूसी

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: लेकिन सदर उस पे दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजॉरिटी से कोई सुबह उस पे रेजोल्यूशन ना पास करे. मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी. ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे. ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे. ये गलत है. मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए.
4: सूबन जे सरहदन बाबत कौमी असेंबली आई तरमीम नथी करे सके. तरमीम लाए सूबे असेंबली मामले हंगेट जी अक्सरियत जरूरी है. ज़ियाउल हक अठे तरमीम जरिए आईन के तब्दील कयो जैके दुरुस्त थियण घुर्जे. सूबन जे सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके. सदर भी तरमीम ते सूबे जी मंजूरी बिना सही नथो करे सके. कराची में मीडिया से गालाइंदे वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो आए त जेकॾहिं कौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरीं अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे. सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे अवाम सां गॾु बीठल आहियूं. जमले हुसैन पारां सामूंडी गुज़रगाह बाबल कब्ज़ो करण जी दावा. आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो. जमनी हुसैन मौजूदु बाबल मंदब वेझो अलमरी फ़ौजी अॾे ऐं रस्क बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे. हाणे बाबल मंदब खे बंदि करण जो इख़्तियार बि हुसैन वटि आहे. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन ख़िलाफ़ कार्रवाई करण वारे सऊदी अरब जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी. अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट मौजूदु सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप सां फोन ते राबितो करे हुसैन ख़िलाफ़ कार्रवाई जी दरख़्वास्त कई हुई जेका

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: असली चीजान चारों मसालों जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर चोटी 2000 डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद जी जान चारों मसालो जी जान चारों मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03-0301-05-109-03-00-310-5109।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03-00-338-5569।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले।

0: जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो رابطے لئے 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: बाउल हक ने आठवीं तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है, उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक सूबा उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में दो तिहाई एक्सेप्टेड के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक टू थर्ड मेजॉरिटी से कोई सूबा उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
1: सूबन जे सरहदन बाबत कौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सके, तरमीम लाए सूबाई असेंबली मां ब भांगे टे जी अक्सरियत जरूरी है। जियाउल हक टी तरमीम जरिए आईन के तब्दील कयो हो जैके दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबन जे सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके, सदर भी तरमीम ते सूबे जी मंजूरी बिना सही नथो करे सके। कराची में मीडिया से गालाईंदे वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो आए ते जेकडे कौमी असेंबली सिंध के विरांगे बाबत को ठहराव मंजूर कर तो सिंध असेंबली पे अड़े ठहराव के रद्द कर चुकी है। सिंध के मानून भी पैं फैसलो बुधा छो है अस सिंध के आवाम से गड बीठल आयो। वजीर आजम की सदारत हेठ जरई शोबे बाबत इजलास, जरई शयन के बरामद लाए घुर्बल कदम खड़ने की हिदायत, जरई शोबे के बरामदात वधाने लाए माली मदद करण जो भी फैसलो। शहबाज शरीफ चो है पाकिस्तान के जरिए शयन के आलमी मंडी तीन रसाई यकीनी बनाने लाए कदम कया वन, सूबन से भी राबतन के बेहतर कयो वने। यमनी हुसैन पारा सामुंडी गुजरगाह बाबुल मंदब ते कब्जो करण की दावा, आलमी व्यापार में वधिक रंडक पैदा थियण जो खदशो। यमनी हुसैन मूजिब बाबुल मंदब वेझो अलमरी फौजी अडे ए जकर बेट ते कंट्रोल करे वरतो है, हाने बाबुल मंदब के बंद करण जो इख्तियार भी हुसैन वट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करण वाले सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द कर छी है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप से फोन से राबतो कर हुसैन खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जेका ट्रंप रद्द कर छी है। ट्रंप इंतजामिया मूजिब अमेरिका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कन्द, वाशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो न है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पैंजे सदारती दौर में खत्म थियण लाइ पुरउमीद। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुद्दे ताईं जारी रहण जो इम्कान नाहे। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना जी 78वीं वर्सी सिंध जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर जी मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी भेटा पेश। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त अॼु क़ौम पंहिंजे अज़ीम अॻवान खे भेटा पेश करे थी। क़ाइदे आज़म दुनिया जो हिकु अज़ीम अॻवान आहे जंहिं तारीख़ जो रुख मोड़ियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहम्मद मोहसिन नक़वी चयो आहे त क़ाइदे आज़म खे क़ौम हिकु नज़रियो शऊर ऐं हिकु आज़ाद रियासत ॾिनी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त मुल्क जी तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ लाइ क़ाइदे आज़म जे ॾिसल रस्ते ते हलणो पवंदो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जी 27 सितंबर से ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त बुधनी। एडवोकेट जनरल केपी के अदालत में पेश, दरख्वास्त की मुखालफत पीटीआई केपी के वे वजीर के धुर बनाने की असदा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो केपी के चीफ सेक्रेटरी आईजी के हल्फी बयान जमा कराने जो हुक्म। केपी के इलाके कोम में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारजी वे दहशतगर्दन में अफगान खारजी अब्दुल्ला भी शामिल। जरियन मूज मारजी वेल अफगान दहशतगर्द अब्दुल्ला वलिद गुलाम खोस अफगानिस्तान के सूबे लोगर जो रहवासी हो, खारजिन से गड कम कंदो हो। मीर रज़ा केस की जांच कदड़ अदालती कमीशन संदस कारोबारी साथी एहसान अनस शमशे के भी तलब करे वरतो। मैनेजर शहरियार अकाउंटेंट उमेर के भी नोटिस जारी। कमीशन मीर रजा जी मुबैना कर्जदार असद अली भट्ट उस्मान बोजई ए हसन तनोली के भी नोटिस जारी। अदालती कमीशन जो चवण है ऑस्ट्रेलिया में हुजण सबब हसन तनोली जो बयान वीडियो लिंक जरिए रिकॉर्ड कयो वेंदो। कमीशन सभी फर्जन के 15 सितंबर से पेश थियण लाइ नोटिस जारी कर छॾिया। तालीम खाते में पीएसटी ए जीएसटी वेटिंग उम्मीदवार बाबत इजलास तलब। सिंधी असेंबली के स्पेशल कमेटी जो बो इजलास 15 सितंबर से इजलास में इंतजार कदड़ उम्मीदवार के भर्ती बाबत फैसला कया वा। सूबाई वजीर जियाउल हसन लंजार से सरदार शाह अली खुर्शीद ने बया शिरकत कंदा। इस्लामाबाद में पीटीआई जो वफद मौलाना फजल रहमान की राइशगाह से पहुंची वो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गुहर ए कौमी असेंबली जो अगोड़ो स्पीकर असद केसर वफद में शामिल। जरियन जो चवण है पीटीआई जे यूआईएफ के सरबराह से मुलाकात शेड्यूल है। कौमी अवामी तहरीक पारा सिंध विरान की साजिश खिलाफ मोहब्बत सिंध रैलियों कढ़ण जो ऐलान। नयाज लतीफ अली जो सदारत हेठ कौमी अवामी तहरीक के स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास। इजलास में सिंध की वहादत खिलाफ साजिशन ए सिंध के वसीलन बाबत मामलों से गौर विचार किया वो। 20 सितंबर से सांगड़, 26 सितंबर से बदीन ए 4 अक्टूबर से ठठे में रैलियों कढ़ण जो ऐलान। अयाज लतीफ अली जो है वफाकी हुकूमत सिंध की वहादत बाबत बहस कराने बदरां सिंध के पानी न मिलने बहस कराए। सिंध में मोटरवे छो न तो ठहराया वे ठहराओ बदरां जोड़ने जो गालू थे घुर्जन। नवन सूबन या इंतजामी यूनिटन के नाले में सिंध जो विरांगो कबूल न है। जकमाबाद में 22 दिन अग अगवा थे नारी के पुलिस पारा बाजियाब कराने की दावा। मेडिकल ला अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मूजिब नारी समरीन कोराई जो चवण है जवाबदार मुआवना बंगलानी मुख्य बेहोशी वाली हालत में अगवा करे कराची में कैद करे रखे हो। जवाबदार शादी जो डटो डेई ब्लैकमेल कंदो रहो। हाने बेहयाती के खतरो है जवाबदार पारा इल्जाम रद्द। पुलिस मौजूद नारी के सुभाने अदालत में पेश कयो वेंदो। छाछरो वेझो गोठ भाडा भरसा जंग मां नौजवान जो वण में टंगियल लाश हथायो आहे। नौजवान जी सुञाण 15 वरन जे दशरथ कुमार वलिद डियाराम मेंगवाड़ जे नाले सां थी आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310 5109, 03000 310 5109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338569।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किसी قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
6: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
5: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
7: 03013992836
6: آئی محمد عمر گوری 03915 5724
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। यादि रखंदा, मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, TB, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, फालिज, खंघि, TB, मादे जी अल्सर, मादे

0: डैम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307359210।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-33-85569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कातला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर रिस्त
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। रबते लाए मंसूर 1-380।

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले इसके हर दाने में तीनों اجزاء की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एग्जेविस मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन से राबतो करे हुसैन खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जेका ट्रंप रद्द करे छी है। ट्रंप इंतजामिया मूजिब अमेरिका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी न है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पंजी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुद्दे ताईं जारी रहण जो इम्कान न आहे।
4: राहुल हक ने आठवीं तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि जो नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में दो तिहाई अक्सरियत के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक टू थर्ड मेजोरिटी से कोई सुबह उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबोगरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
3: सूबनि जे सरहदनि बाबति क़ौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सघे। तरमीम लाइ सूबाई असेंबलीअ मां 2/3 जी अक्सरियत ज़रूरी आहे।

अब्दुल हक अठी तरमीम जरिए आइन के तब्दील कयो हो जैंके दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबन के सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके। सदर भी तरमीम से सूबे की मंजूरी बिना सही नथो करे सके। कराची में मीडिया से गालाइंदे सिंध के वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण हो जैसे कौमी असेंबली सिंध के विरांगे बाबत को ठहराव मंजूर कर सिंध असेंबली पेरे ही अड़े ठहराव के रद्द कर चुकी है। सिंध के मानन भी पैंजो फैसलो बुधाय छो आवाम से गड बीठल आयू। वजीर आजम की सदारत हेठ जरई शोबे बाबत अहम इजलास। जरई शयन की बरामदात लाए घुर्बल कदम खण की हिदायत। जरई शोबे की बरामदात वधाण लाए माली मदद करण जो भी फैसलो। शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान की जरई शयन की आलमी मंडी ताई रसाई यकीनी बढ़ाने लाए कदम खया वन सूबन सा भी राबतन के बेहतर कर वे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई की 27 सेप्टूबर से ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त बुधनी एडवोकेट जनरल केपी अदालत में पेश। दरख्वास्त की मुखालफत पीटीआई ए केपी के वे वजीर के धुर बढ़ाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ए आईजी के हल्फी बयान जमा कराने जो हुक्म। पीटीआई वफद की मौलाना फजल रहमान से संदस रहायशगाह से मुलाकात। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर असद कैसर ए बेन मुलाकात कई। हुकूमत मुखालिफ तहरीक ए पीटीआई की इस्लामाबाद में ऐलानियल धरने से गाल बोल। बैरिस्टर गोहर एहतजाज जो फैसलो रुगो पीटीआई जो न पर अपोजिशन जो है। सब जमायतू शरीक थन्दियों।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर 5 साल ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 310509 0300 5109।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड सर्विस मोटरसाइकिल जी भेकई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
7: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आहिन।
8: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
9: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है तेरा एहसान। बिल्कुल जनाब, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान जैसा एक अजीम मुल्क बनाया और आज हम उसमें सांस ले रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आज कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह आज हमारे दरमियान मौजूद होते तो वो हमसे क्या कहते। शायद वो हमसे कहते, अपने मुल्क से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं अपने किरदार से करो, ईमानदारी इख्तियार करो, अपने फराइज अदा करो, कानून का एहतराम करो, दूसरों के हकूक का ख्याल भी रखो, तालीम हासिल करो और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार जरूर अदा करो। तो जनाब ये सारे सवाल होते जो कायदे आजम हमसे जरूर कहते, और एज अ

लख ऐब मनु इको सिफत मेरी करा इश्क।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी भेट हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

भी दोस्तों, एक अच्छा उस्ताद भी पाकिस्तान की अच्छी खिदमत कर सकता है। एक ईमानदार डॉक्टर, एक जिम्मेदार सहाफी, एक मेहनती मजदूर, एक बाकिरदार तालिब इल्म, सब पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। तो जनाब, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना कितना किरदार डाल रहे हैं। तो जनाब, इस शो में आपका किरदार तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप हमें मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत प्यारा सा किरदार है जो कि आप अपनी जिंदगी में निभा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह आप अपनी जिंदगी में तमाम जितने भी आपको किरदार मिले, जितना भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले कहीं पर भी अच्छे कामों में, तो आप जरूर कीजिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अपना किरदार निभाते हुए हमारे शो में हकीम मसूद अहमद जमाली साहब, नूर मोहम्मद लाशारी साहब कंदकोट से, मोहम्मद बिलाल जमाली साहब।

0: आप कामरान जमाली गोठ बचल शामयानी सखर से अवां जो प्रोग्राम पसंद कयूं था जिशान रोकड़ी जी आवाज में सोनिया अखा बुधायो बिल्कुल जनाब तमा लास्ट टाइम भी फरमाइश कई पर मां पूरी कोन करे सगम इंशाल्लाह ताला हियर ही मां तमा के गानो बुधाइंदम सोनिया अखा बाय जिशान रोकड़ी थैंक यू हकीम मसूद अहमद जमाली साहब नूर मोहम्मद लाशारी साहब कनकोट खां मोहम्मद बिलाल जमाली कामरान जमाली गोठ बचल शामयानी सखर खां तो जनाब इसके बाद हमारे साथ हैं आशिक अली चांडू साहब अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द शो सलाम टू ऑल माय मी क्वेटा से ओके जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मैसेज किया है जनाब आशिक अली चांडू साहब आपने क्वेटा से मैसेज किया है तो आप हमें ये बताइए कि क्वेटा का हालचाल कैसा है क्वेटा में कोई गर्मी वर्मी कम हुई और सर्दियों का सीजन कोई शुरू हुआ बर्फबारी का क्या सीन है सब कुछ हमें बताइए आशिक अली चांडू साहब थैंक यू सो मच आपके तमाम दोस्तों तक आपके सलाम पहुंच गए हैं अब्दुल रजाक साहब हैं मोहम्मद खान कुंभार सोना बेवफा जमाल कुंभार सरदार मोहम्मद अली कुंभार हाली पोर्ट्रा स्टाफ खान शो इज वेरी नाइस इन वक्त तमाम जो प्रोग्राम मेले अच्छा मेले अंजाय मिली एंजॉय क्यों था ओके गुड यार आई गॉट इट मिली एंजॉय क्यों था दोस्तन सागर थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक साहब इकबाल लगारी साहब ऐसा सबनी सागर मौजूद हैं विलेज सोनू खान लाशारी बीरपुर खास से सुन रहे हैं अशफाक भाई नाइस शो थैंक यू इकबाल लाशारी भाई लव यू अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नजीर खोसो सोबतपुर बल्तिस्तान से हमारे साथ हैं ये कहते हैं ये मत देखो कि कोई तुम्हारे साथ मुखलिस है या नहीं अपने आप को जो है हर रिश्ते के साथ मुखलिस और ईमानदार रखो अगर कोई तुम्हारे साथ मुनाफकत या धोखा करेगा तो इसका सिला रब से पालेगा और तुम्हें तुम्हारी इखलास और सच्चाई का जवाब और अजर भी अल्लाह ताला ही अता करेगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने और पॉजिटिव बात की और हम चाहते हैं किसी तरह की पॉजिटिव बातें जो हैं आप हमारे साथ करते रहें थैंक यू सो मच हमें याद करते हैं आप और जो है हमारे साथ आके इतने ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छी बात आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं 5 से 7 तक आप हमारा साथ निभाते हैं तो जनाब 5 से 7 तक आप हमारा साथ निभाते रहिए और अगर हमें SMS आप करना चाह रहे हैं तो जनाब 8881 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं टाइप SKR अपना स्पेस दीजिए अपना मैसेज लिखिए और सेंड इट टू 8881 आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं हमारे शो में कॉल भी कर सकते हैं जनाब सारे के सारे हमने आपको जो है अथॉरिटीज दे दी हैं कि किसी भी तरीके से आप हमारे साथ पहुंच जाए और हमारे शो में पार्टिसिपेट करें जनाब इतनी सारी फैसिलिटीज इतनी सारी अथॉरिटीज आखिर देता कौन है हम देते हैं आपको बिल्कुल जनाब GFMHT नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आपको हम अलाउ करते हैं कि आपको SMS आता है तो आप SMS करें आपको कॉल कर सकते हैं तो आप कॉल करें आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जनाब तो ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप हमारे साथ बदरजा अदब मौजूद हों और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट करें खैर जनाब कॉल मिलाने के लिए हमारा नंबर एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए 03000113488 और जनाब इसके साथ साथ सखर की गर्मा गर्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ कम हुई है और जनाब कम होगी तो सर्दियां आएंगी और सर्दियों की थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है मुझे कि सर्दियां अब पहुंचने वाली हैं और गर्मियां अबाउट टू एंड हैं तो 38 सेंटीग्रेड आज का दर्जा हरारत है जो कि हम आपको बता रहे हैं कि सखर का लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम साईं पेरन ते हथ
0: साईं साईं साईं दिल ते हथ रखी तवा के भाई हथ बधी करे अस्सलाम वालेकुम जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब ए वन आहिं तवा बुधायो पांजो नालो किथा पे गल आयो केर पे गल आयो
1: बस तवा सुने तो पोंटे अमीर बक्सम आरा मिस्त्री गोट का
0: अमीर बक्स साहब केड़ा हाल चाल है मिस्त्री गोट का
1: सब खैर लगो
0: अच्छा मिस्री गोठा मिस्री गोठा
1: हां मिस्री गोठ मंगनार
0: माशाल्लाह माशाल्लाह ओते सब मिस्री जेड़ा मानू रहन ता तवा जेड़ा
1: हां
0: वाह वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त अच्छा इदा ये बुधाय छापियो चाहो तो गर्मी तवा जे वधी का
1: गर्मी असन दे वधी का रात जो थद थिंदी आ बाकी कराची सांगड मुल्क थडो थी वा तो के छा गाल बुधाय
0: अरे यार तवा त मिस्री जेड़ा मानू आयो तवा त भर में भला गर्मी छोती पई दी
1: बस अला सही खैर कंदो बस अला खैर 15 दिन तक मौसम सही थी वंदे वो नसीब जी गाला
0: नसीब जी गाला बिल्कुल अला सही कंदो त थद थी वंदी सो त रात अलाई थद हुंदी आ माशाल्लाह आई मौसम जको है सर्दी जो अचण वारो है दिल जाए क्यों बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: यो बुधायो अदा साईं मुझा प्यारा भात गानो हाने बुधाय तो सोनिया अखिया छो तो असा खां हिकड़ी लिसनर फरमाइश कई है हकीम मसूद जमाली साहब पोए भी प्रोग्राम में फरमाइश की असा न हलाए सके से हाणे चवण जा दिल न था टोड़े उन जो
1: साईं हाणे मत फौगिया समरे जो कला से यो जिन जो साणो मिठा मानु छडे या दोस्त शामिल करा ने
0: हां हां
1: अला दद मार मोहम्मद अली मार पठान खान पक्के अब्दुल्ला बंगला कम को तुम पोपट पे मोर पिता जी
0: अच्छा बस
1: ओके
0: ओके मुझे प्यारा तो जनाब हम गाना प्ले करते हैं बहुत प्यारा सा सुनिया किया। इस गाने को सुनिएगा, सुनते रहिएगा जी एफ एम एटी एट नेटवर्क से। आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद हर्ष फाकिया।

0: 5:45 PM. It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamabad. GAF पहला Sharia compliant gold based financing.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, किस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब? 03000113488 पर, और हम आपके साथ मौजूद हैं आज के शो जिसका नाम है आई लव यू ऑल में। वेल, हम मैसेज शामिल शो करते हैं जो कि हमें बड़े प्यार से अब्दुल रजाक साहब ने भेजा है। अशफाक भाऊ, एनी टाइम तमाम जो प्रोग्राम मेलो में ॿुधूं पिया दोस्त सां गॾु, मेलो इंजॉय पिया कयूं, घुमण तफरी, वाओ गुड। मां हिकिड़ो दफ़ो को मेलो इंजॉय कयो आहे ऐं उहा बि त मेलो हुयो, मूंखे त यादि बि अञा कोन्हे, पर तव्हां कहिड़ो मेलो इंजॉय पिया कयो असांखे ज़रूरु ॿुधायो त तव्हां जेको मेलो इंजॉय कयो था ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु ज़बरदस्त हिन मेले खे इंजॉय करणु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे, त दोस्तनि सां गॾु घुमण फिरण जो प्रोग्राम ठाहियूं ऐं वरी उते वञूं ऐं मज़ो अचे, त तव्हां इंजॉय कयो ऐं मुंहिंजो प्रोग्राम बि ॿुधो। वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। आई थिंक वफ़ा वहीद जतोई असां सभिनी सां गॾु मौजूदु आहिनि।
1: साईं बिल्कुलु बिल्कुलु, वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई भाउ केटी शाबिलो तालको गुलो सकरा।
0: वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। वहीद साहब, इहो ॿुधायो त अॼु जेको आहे असां यम वफ़ात जो ॾींहुं मल्हायूं पिया क़ाइद आज़म मोहम्मद अली रहमत अलह जो, त इहो जेको आहे पंहिंजो हिसो
1: साईं कोन थो हलां त

0: पंहिंजे कामयाबी माणियूं ऐं जहिड़नि फितनि खे छॾियो, नफ़रत खे छॾियो,
1: एग्जैक्टली सार ई हसद जॾहिं असां कंदा आहियूं त पोइ असां जेको आहे हमेशह पोइते रहिजी वेंदा आहियूं, ऐं पोइ असांखे बदिले वठण जी उहो हूंदी आहे त असां बदिले वठूं। अला कंहिंखे बि अगरि अला असांखे ॾिनो आहे त उहो हुनजो नसीब आहे, असां कंहिंजो बि नसीब खसे कोन था सघूं।
0: बिल्कुलु बिल्कुलु ज़ाहिर ॻाल्हायूं त असां ॾिसो पाकिस्तान जो झंडो बि छा हुआ
1: जी, पाकिस्तान जो झंडो
0: तव्हां बि ज़रूरु घुमिया हूंदव कचनि में टकनि में, त मुल्क सावक सावक
1: आहे,
0: पाकिस्तान कीअं थो माना सावक सां गूंजे,
1: अलाह साईं जे फज़लो करम सां सावक सां गूंजे थो। बिल्कुलु
0: बिल्कुलु।
1: त वहीद वफ़ा साहब इहो ॿुधायो, हाणे शमन जो गानो हिकिड़ो भाव प्ले करण लाइ चयो आहे त उहो तव्हां बि शमन ॿुधंदा आहियो त
0: बिल्कुलु असां त शमन जा आहियूं छो त वॾा जीअल आहियूं।
1: हा सही सही, मां
0: मूंखे वणंदो थी
1: कहिड़ो अच्छा, इनशाला इहो बि ज़रूरु प्ले कंदासीं, पर फ़िलहाल हुन कयो आहे, हुन चयो आहे दिलि मेरा उसने पत्थर से तोड़ दिया ज़ालिम ने। चयो वहीद भाउ
0: बारिश तक अलाह तव्हांखे वधाए प्रोग्राम कंदा रहो, हिकु त तव्हां ॾे अॼु वॾी दिलियुनि जा था कयूं, स्टे सघंदासीं इहो नगमो तव्हांजे नाले।
1: वाह वाह वाह, थैंक यू।
0: वरी हिकिड़ो बेटो अथव बाबर शेख साहब।
1: अच्छा बाबर
0: शेख, अलाए काॾे लंबी जुदाई करे आहे ख़बर त कान्हे, न त प्रोग्राम करे कोई कोन थो, इन खे बि खोड़ भरा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मां जो कहाणी जो आहे रफ़ीक जो गोली मार मां ॿुधे वरितो।
1: अच्छा, मां चयो गोलियुनि जो कारोबार कंदो आहे।
0: ॿियो मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर, मां जपी मुंहिंजे भाटे आया त मां जपी, बाक़ी जेके हाल चाल ॿुधनि था
1: जी जी,
0: वसा अब्दुल वहीद जते पारां सॼनि ॿुधंदड़नि खे ऐं तव्हांखे सॼे स्टाफ खे वसा अब्दुल वहीद जते पारां खोड़ सारा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम खोड़ सारा, थैंक यू वहीद भाई। असां सभिनी सां गॾु भई जतोई साहब जेको असांखे हमेशह रेगुलर कॉल कंदो आहे, त जनाब तव्हां बि असांखे कॉल करे सघो था, असां तव्हांखे हींअर ॿुधायूं था शीशे का दिलि मेरा पत्थर से तोड़ दिया और भाई शमन अली मिराली, पर हुन खां पहिरीं वठूं था शो जी हिकिड़ी ॿी कॉल ऐं चऊं था सलाम अलैकुम। हैलो जी जनाब, हमारे साथ आ तो गए हैं हमारे भाई और पर ये बात बात क्यों नहीं कर रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉल दी एंड हो गई है, पर कोई बात नहीं, एक और आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, अरे भैया हेलो, चलिए जनाब लगता है मुझे हेलो हेलो में टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जनाब कि ये कि आपको सुनाते हैं गाना, और गाना है शीशे का दिल मेरा और इसने तोड़ दिया पत्थर से तोड़ दिया कि पता नहीं किस चीज से तोड़ दिया, सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: आज भले कर दे लेकिन सदर उस पे दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजॉरिटी से कोई सुबह उस पे रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है। मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
4: सूबन की सरहदों बाबत कौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सके। तरमीम लाए सूबाई असेंबली में बभांगी टे की अक्सरियत जरूरी है। जियाउल हक अठी तरमीम जरिए आइन के तब्दील कयो हो जैके दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबन की सरहदों में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके। सदर भी तरमीम से सूबे की मंजूरी बिना सही नथो करे सके। कराची में मीडिया से गालाइंदे सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण हो तो जैसे कौमी असेंबली सिंध के विरहांगे बाबत को ठहराव मंजूर कर तो सिंध असेंबली पेरे ही अड़े ठहराव के रद्द कर चुकी है। सिंध के मानून भी पैंजो फैसलो बुधाए छोड़ो है। असा सिंध के आवाम से गल बीठल आयू।

टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटताई रेंजर्स जे कार्रवाइनि जो नतीजो आहे। पाबंदी मड़ियल तंज़ीमनि जूं सरगर्मियूं ऐं रूपोश जवाबदार सिक्योरिटीअ लाइ ख़तरो आहिनि। अमुन अवाम जी जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ लाइ रेंजर्स जी मौजूदगी तमामु ज़रूरी आहे। सिंध असेंबली रेंजर्स जे सूबे में मुक़ररी वारे मुदे में हिकु साल जे वाद जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियादनि ते थींदड़ ऑपरेशननि में अहम किरदार अदा कयो आहे। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 19 जुलाई 2027 ताईं रेंजर्स मुक़रर रहंदी।

सिंध असेंबली जे मेंबर्स जो सूबे में बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ़ एहतजाज। स्पीकर अवेस कादिर शाह समूरनि बिजली कंपनीज जे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स खे 23 सेप्टेम्बर ते कमेटी इजलास में घुराइण जी हिदायत करे छॾी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण चयो आहे त लोड शेडिंग पाणी बिजली वारी वज़ारत जी नाअहली ऐं पाकिस्तान में गवर्नेंस जी नाकामीअ जो आला तरीन मिसाल आहे। एस्को सेप्को ऐं के इलेक्ट्रिक जहिड़ा इदारा अवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि। सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वञे थी। इहो मसलो कौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि भरपूर अंदाज़ में उथारियो वञे। रुगो बिजली न पर आवाम खे गैस ऐं पाणीअ जा मसला बि दरपेश आहिनि। स्पीकर बिजली कंपनी जे सरबराहनि खे घुराइण जी हिदायत कंदे घरू वज़ीर खे चयो त हुन ते अमलदार न आया तव्हां खे तकलीफ़ ॾींदासीं।

0: सिटी काउंसिल कराची सिंध में नवा इंतजामी यूनिट्स ठाहिण खिलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। मेंबर्स चयो त सिंध हिकु हुई, हिकु आहे ऐं हमेशह हिकु ई रहंदी। ॿोलीअ जे बुनियाद ते नफ़रतुनि खे हथी न ॾिनी वेंदी। कराची खे सूबो ठाहिण ऐं इंतज़ामी यूनिट्स जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जो माज़ी लसानी बुनियादनि ते ॿधल आहे। जमात इस्लामी जे मेंबरनि जो ज़मीन जे मामले ते एहतजाज, डेस्क ते बीही सख़्त नारेबाज़ी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ऐं डेप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद इजलास छॾे रवाना थी विया। मुर्तज़ा वहाब जो चवणु हो त ॿुधायो वञे त नूरुल हक़ इदारो कंहिंजी ज़मीन ते ठहियल आहे, हीअ उहा मुनाफ़िकत आहे जंहिं ख़िलाफ़ आहियां। मुनाफ़िकत खे वाइको कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
3: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान डोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां खे खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
4: मेरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
7: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर, असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप, 1.5-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम, 03015-54-456 ऐं तौकीर अहमद, 03016-23-793।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
8: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
8: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
8: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
9: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी,
10: 03013992836। मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: system. Contact number 0300-00-27234. Nisar Ahmed Memon, Principal Mazhar School System, Mehrapur. Contact number 0301-3865-453.
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: गुर्दन ते असरात अची वञनि था, जिगर ते असरात पइजी वञनि था। इन जे करे उहा इन्हनि शयुनि खां जेको आहे सो ख़ालसतन बचो ऐं कुदरती शयुनि जी तरफ़ जी मां ॻाल्हि कई, सौंफ़ तमामु बहितरीनु, सौंफ़ ऐं जीरो तव्हां जेको आहे सो काढ़े पाणीअ में पी सघो था, उहो काफ़ी फ़ाइदो तव्हांखे ॾेई सघे थो। सौंफ़ ईअं तव्हां खाईंदा आहियो ईअं काफ़ी जेको फ़ाइदो पइजी ईंदो आहे। पुदीना हिकिड़ो फूदिनो जंहिंखे चवंदा आहियूं त उहो तमामु हिकिड़ो इन जे लाइ तमामु बहितरीनु आहे। फूदिने जो शरबत थींदो आहे, उहो तव्हां पी सघो था जेको आहे सो। ऐं अहिड़ियूं शयूं जेके नुक़सानु ॾियनि थियूं ऐं उहो तव्हां उनखे बंदि करे छॾियो। ऐं पंहिंजो खाइण पीअण जो जेको रूटीन आहे, लाइफ स्टाइल पंहिंजो आहे, उनखे थोरो चेंज कयो। यानी हिकिड़ो राति जो देरि सां मानी न खाइणु घुरिजे, घटि में घटि शाम जो माण्हू 7-8 बजे जेको आहे सो यानी राति जी मानी खाए त जीअं उहा हज़म थिए ऐं माण्हू जेको आहे सो सुम्ही सघे सही तरीक़े सां, ऐं सही तरीक़े सां उहो जेको आहे सो मादो उनखे एक्सेप्ट कंदो आहे। खीर बि राति जो जेको आहे सो घटि में घटि खीर बि पंहिंजो हज़म करण लाइ 2 कलाक वठंदो आहे। इन जे करे खीर बि अहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे देरि सां नाहे पीअणो। घणा माण्हू राति जो निंड मां उथी करे खीर पीअंदा आहिनि, या इहो बि तमामु हिकिड़ो ग़लति हूंदो आहे। चांहि जो इस्तेमालु घणो हूंदो आहे, स्मोकिंग कंदा आहिनि, त इहो मादे खे नुक़सानु जेको आहे सो थिए थो। ऐं दवाऊं जेके मां होम्योपैथिक जो ॿुधायूं त उन में इहो आहे जो माना माण्हू अॻिते हली जेकॾहिं उनखे छॾे पियो वञे थो त आदि कोन थो थिए। सो होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु कंदा कयो। असांजी क्लिनिक ते तव्हां कहिड़े बि टाइम ते अची सघो था। महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति असांखे ॼाण ॾींदा आहिनि। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851, 0301-2196-851। डॉक्टर साहब, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टरनि जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरक जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो, नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जे खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बीसी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल बि ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहबु, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, ॾिसूं था कहिड़ी लाइन ते आहे मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कुछ लिसनर्स अहिड़ा हूंदा आहिनि कॉल करे मतिलबु इलाज जा असांजो बि टाइम ज़ाया कंदा आहिनि, ऐं तव्हां बि चयो पहिरियां त उनखे कॉल करणु ॾींदा जंहिंजो मक़सदु हूंदो आहे कॉल जो, या को मरीज़ हूंदा आहिनि का ॻाल्हि पुछणु चाहींदा आहिनि त महिरबानी करे उन्हनि खे कॉल करण जो मौक़ो ॾींदा कयो।
0: जी साईं, बिल्कुलु। ऐं इहा ई ॻाल्हि मां प्रोग्राम जी शुरूआति में करियमि त अहिड़े क़िस्म जा असां अॼुकल्ह पंहिंजे मोबाइल में हिकु ऐप इस्तेमालु कंदासीं।
1: जी जी साईं।
0: जिन सां उन्हनि जा नंबर्स अची वेंदा आहिनि, उहे हमेशह जे लाइ हिकु त ब्लॉक थी वेंदा, ऐं असांजी मथीं एजेंसी हूंदी आहे उन ॾे उहे नंबर थी वेंदा।
1: बिल्कुलु सर।
0: जीअं उन्हनि ते बि वरी एक्शन खणी सघे, छो जो हिकिड़ो बार बार माण्हू चवे थो पियो त उन ॻाल्हि खे सम्झणु घुरिजे।
1: बिल्कुलु सर, मजबूरनि
0: या हिकिड़ो आवाज़ु घणा माण्हू जेको आहे सो चेंज करे ॻाल्हाइनि था, या तमामु हिकिड़ो इंतिहाई ग़लति आहे। अॼुकल्ह इन ते तमामु सख़्ती बि आहे, ऐं इहो हिकिड़ो ग़लति कमु करणु आहे। इन जे करे असां वरी बि हिकु दफ़ो गुज़ारिश कंदासीं त महिरबानी करे इहो कमु हरगिज़ न कजो। सुभाणे तव्हां कंहिं बि मसइले में पइजी।
1: बिल्कुलु सर, मजबूरनि पोइ ईअं ई करिणो पवंदो आहे। हलंदासीं हिकु ॿी कॉल जी तरफ़। अस्सलाम वालेकुम।
2: हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। जी जी, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
2: साईं, मूंखे दिमाग़ी मसइलो आहे, घटि में घटि 6-7 साल सां दवा वरिती आहे मेडिकल जी, राणीपुर मां वरिती आहे गंबट मां, उन मसइले बाबति पुछाईंदासीं।
1: जी जी, तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो?
0: ठीक है अदे जो मसलो आहे
1: को रेडियो ॿुधायो
0: ॿुधायो अदे खे बि इहो ई मशवरो ॾींदासीं त हिकु त जेको पुराणो मसलो आहे मसलो दिमाग़ जो त हज़ारे मसला हूंदा आहिनि दिमाग़ जो छा मसलो आहे निंड नथी अचे या सोच घणी आहे या टेंशन आहे या डिप्रेशन आहे या साइकोलॉजिकली को असरु आहे त उहो सॼो पंहिंजो केस खणी ऐं सुभाणे रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारींदा त वधीक बहितर
1: रूबरू अचे त वधीक सर डायग्नोसिस थी सघे थो हुनजो बिल्कुलु प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब हलंदासीं हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ ॾिसंदासीं लाइन ते केरु आहे असांजो मौजूदु अस्सलाम वालेकुम
2: साईं वालेकुम अस्सलाम मां मुजाहिद हुसैन सर थो ॻाल्हायां
1: जी जी
2: साईं मूंखां हिकिड़ो मसलो आहे गोॾे में सूरु आहे ॾाढो गाॾी स्टाट कयां थो त पोइ माना वेलण बि उथलियो वञे ऐं गोॾे में सूरु आहे ॾाढो जेकॾहिं महीनो खनि नथो हलायां गाॾी त पोइ सूरु ख़तमु थी थो अचे
1: अच्छा हा बिल्कुलु तव्हां क़रीब आहियो अगरि रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितरु आहे वरना डॉक्टर साहिबु मूंखे ॿुधायो थो रेडियो ॿुधो जी सर
0: अॼु असीं बिल्कुलु ई चवंदासीं त हिकु त जेको आहे सो कोशिशि कयो त जेकॾहिं कंहिं जंहिं टंग में तकलीफ़ आहे त उन ते वज़न घणो या ओकड़ूं घणो जेको आहे सम्झो या हिकिड़ी सट पाइण सां मूंखे तकलीफ़ थिए थी त उनखे कंहिं तरीक़े सां जेको आहे सो यानी आराम वारे तरीक़े सां जेको आहे सो तव्हां उनखे हैंडल करे सघो था ऐं उनखां पोइ तेल सरे जो गरम करे उन में हेठि विझी ऐं उहो उनखे लॻाइण सां काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे काफ़ी असरअंदाज़ थींदो आहे ज़ैतून जो तेल बि उनखे काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो ॾेई सघे थो राति जे टाइम में तेल सरे जो या ॾींहं जे टाइम में बि तव्हां लॻाए सघो था ऐं उनखां अलावा राति जे टाइम में खीर काढ़े ऐं उन में बि जेको आहे सो हैड विझी थोरी ऐं उहो पी सघो था उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे वरना जो तव्हां एक्सरे कराए ऐं रूबरू ॾेखारींदव त उन में बि ख़बर पइजी वेंदी त छा मसइलो आहे त उनजे हवाले सां बि ट्रीटमेंट करे सघिजे थी वॾी महिरबानी
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु डॉक्टर साहबु हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचार ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि ऐं नोट अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-96-8051 हलंदासीं हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ अस्सलाम वालेकुम
2: हलो
1: जी अदा केरु ऐं किथां खां छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां डॉक्टर साहब ॿुधाए थो लेकिन रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर थींदो ठीकु आहे रेडियो ॿुधो अव्हांखे डॉक्टर साहब ॿुधाए थो जी सर
0: जी साईं बिल्कुलु ही अहिड़ी क़िस्म जी तकलीफ़ हूंदी आहे हिकु आम तकलीफ़ नाहे का उल्टी या बुखार या नज़लो हुजे जो तव्हांखे फ़िलहालु को आरज़ी टोटको ॿुधाइजे या मथे जो सूरु हुजे हीअ पिते में पथरी आहे ज़ाहिर या त उनजो हल थींदो ऐं हूअ मेडिकल में उनजो हल ऑपरेशन आहे असां वटि इन जी हल जेको आहे सो ट्रीटमेंट ई आहे दवा ई आहे सो बि को हिकिड़े वेले जे हिसाब सां दवा न हूंदी आहे तक़रीबन 3-4 महीना दवा खाइबी आहे सो बि पेशंट जो अल्ट्रासाउंड थियल हूंदो उनखे रूबरू ॾिसी करे त उन में ॾिसिबो त उनखे केतिरी MM जी पथरी आहे पोइ उन हिसाब सां पिते जी छा पोज़ीशन आहे उनजा वाल्स जी छा पोज़ीशन आहे पोइ जेको आहे सो ऐं पेशंट जी कंडीशन छा आहे उनखे ब्लड प्रेशर आहे शुगर आहे या रत जी कमी आहे या मादे जी तकलीफ़ आहे या फैटी लिवर आहे या ॿिया का तकलीफ़ आहे त पोइ जेको आहे सो उनखे उन हिसाब सां तकलीफ़ ईंदी आहे हिते तव्हां उनखे यानी नस पंध वारी बीमारी न सम्झो हीअ हिकिड़ी तकलीफ़ आहे जंहिंजी मुकमल ट्रीटमेंट थींदी त अलाह कंदो बग़ैर ऑपरेशन जे तव्हांजे पिते जी पथरी निकिरी वेंदी पर इलाज सां ठीकु आहे दा सो तव्हां सुभाणे रूबरू पेशंट खे वठी अची ऐं अल्ट्रासाउंड बि खणी ॾेखारे वञो वॾी महिरबानी
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असां शामिलु थी सघो था इन लाइ लाइव कॉल नंबर आहे 0301-96-851 0301-2196-851। डॉक्टर साहब जो एड्रेस ऐं टाइम नोट कंदा। डॉक्टर साहब हर बा खमीस जुमे छंछर आचार ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचार ऐं चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़नि खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रॻ जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था ऐं असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-96-851। इन नंबर ते कॉल करे तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहब सां राबितो करे सघो था ऐं कंहिं बि बीमारी बाबति तव्हां ॼाण हासिलु करे सघो था।

0: डॉक्टर साहब हर बार खमीस जुमे छंछर आचार्य सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वदन पोटा पेट्रोल पंप कोटली रोड मरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा असने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था असने लाइव कॉल जो नंबर है 0301-196-851 0301-2196-851 जी सर ये सर चेकअप फीस होंगी है टे ढी या सर अवी कंपनी बर्दाश्त कहती है या
1: सर चेकअप फीस फ्री जो हों जर्मन होम्योपैथिक तरफा जो है सो पेशेंट्स के लिए खास रिलीफ हों जो अस मरीजन के पे हिसाब से दींदा आयो अ प्रोग्राम के तौर से असा पेशेंट्स जो हों उनके होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल जो तरीको जो उनके बार बार समझाइंदा आहियूं ॿुधंदा आहियूं पोइ ॿुधाईंदा बि आहियूं पर ख़ासि करके के पेशेंट्स ईअं हूंदा आहिनि जेके सही तरीक़े सां दवा खे इस्तेमाल न कंदा आहिनि या उन्हनि जो तरीक़ेकार जो ख़बर मरीज़नि खे न हूंदो आहे जंहिंजे करे बि पोइ इहा दवा उनखे जेको आहे सो उन्हनि मरीज़नि खे यानी दवा असरु न कंदी आहे जेके इस्तेमालु तरीक़ो सही न हूंदो आहे यानी हिकिड़ी ॻाल्हि असां जी सही कॉल
0: सर कॉल पे तव्हांजे मौज़ूअ कंटिन्यू कंदासीं लेकिन हिन खां पहिरीं हिकिड़ी कॉल आहे अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: केरे किथां खादा
2: साईं नजवली खासी ले गाला रोशा लखा रोड खौ
0: छा पुछन चाहिंदा डॉक्टर साहब का
2: सर असन जी मामी आए उने के जो आवाज मना चंदा मुतर करी वना केमल के पानी आवाज इलाज दादा कराए तो पर समझ न छी
0: अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब मके बताए थोड़े टाइम दो जी सर
1: जी सही बिल्कुल या भी मके खोड़ सारा मसाइल हूँ कन जहाँ मसाइल हूँ दिमाग की कमजोरी होंगी है ब्लड प्रेशर हों करे सो इन अदे के भी यही चवस तो अमा के रूबरू डेखारे वन तो वो बेहतर रहो ऐसी कर दवा जो सो थी इनशाला तला अड़े किस्म जो खोड़ सारा केसिस अलहमदिल्ला सही थी वहबानी हलूँ तेजे मौजू की तरफ तो गाल पे कई तो पेशेंट्स घणा जेको आहे सो दवा खे यूटिलाइज़ जेको आहे सो सही न कंदा आहिनि यानी हिकिड़ो हिकु त जेको आहे सो फ्रिज असांजी दवा खे फ्रिज में नाहे रखणो हूंदो ऐं उन खां पोइ हिन दवा खे जेको आहे सो जेतिरो मक़दार क्वांटिटी ॿुधाई वेंदी आहे यानी अधु कप पाणीअ में जेको आहे सो 10 फुड़ा त ओतिरा ई फुड़ा 10 फुड़ा ई विधा वेंदा आहिनि ऐं अधु कप पाणी में ई विधा वञनि घणा अधु गिलास में विझंदा आहिनि त ज़ाहिर आहे त उहा दवा असरात एतिरो न कंदी आहे या सिर्फ़ु थोरे पाणीअ में जेकॾहिं ऐं घणा वरी ईअं हूंदा आहिनि जो अनलिमिटेड दवा विझी छॾींदा आहिनि जीअं ॿुधाईसीं 10 फुड़ा हुन विझी छॾिया 40 फुड़ा त उन सां उनखे जेकी हीअ मां ॻाल्हि कई त दवा जो को साइड इफ़ेक्ट न या को नुक़सानु न हूंदो आहे पर मिसयूज़ करण सां पोइ दवा जेको आहे सो ज़ाहिरी आहे त यानी ओवरडोज़ वारे तरीक़े सां जेकॾहिं केरु इस्तेमालु दवा कंदो त उनखे इस्तेमालु कंदो त उनखे ज़ाहिरी आहे जेको आहे सो नुक़सानु थींदो सो इन जे करे जेको तरीक़ो आहे डोज़ेज आहे पोइ उन हिसाब सां जेको आहे सो यानी जेको ॿुधायो वञे ऐं पाणी हमेशह मां ॿुधाईंदो आहियां त जेको दवा जो रूल आहे त सजर पाणीअ में नलके जो पाणी हुजे ताज़ो या मोटर जो पाणी हुजे उन में बर्फ़ जे पाणीअ में दवा पवण सां बेअसर थी वेंदी आहे यानी उहो पंहिंजो असर न कंदी आहे जेकॾहिं के बल्कि मां वटि खोड़ सारा अहिड़ा पेशेंट ईंदा आहिनि ऐं असां पुछंदा आहियूं मरीज़नि खां ईअं सम्झो त 30% पेशेंट असां वटि अहिड़ा आहिनि जेके इहे ईअं दवा खे मिसयूज़ कनि था पोइ जंहिंजे करे मरीज़ खे फ़र्क़ु न पवंदो आहे ऐं घणा जेको आहे सो खोड़ सारा ॿिया बि जेको आहे सो तरीक़ेकार आहिनि मिसलनि हिकिड़ो खाधे पीते खां हमेशह असां मथां दवा चवंदा आहियूं घणा जेको आहे सो नेराने दवा इस्तेमालु कंदा आहिनि या जेको आहे सो यकदमि जेको आहे सो वरी मथां स्मोकिंग कंदा आहिनि कॾहिं बि होम्योपैथिक दवा जेकॾहिं केरु इस्तेमालु करे थो त यकदमि उनखे सिगरेट नोशी नाहे करणी तक़रीबन 15-20 मिंटनि ताईं जेकॾहिं केरु सिगरेट पीए थो त वरी जल्दी पी जेको आहे सो हुनखे ऐं जल्दी दवा नाहे पीअणी या सिगरेट पी ऐं जल्दी दवा नाहे पीअणी या दवा पी जल्दी सिगरेट नाहे पीअणो त इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके मरीज़ खे असां उते रूबरू वेही करे सम्झाए पोइ दवा ॾींदा आहियूं उन जे बावजूद बि जेको आहे सो मरीज़ ग़लती करे ईंदा आहिनि इन जे करे हिन ऑनएयर प्रोग्राम ते अवां सभिनी ॿुधंदड़नि खे कंहिंखां बि दवा वठो था पर दवा जो तरीक़ेकार इस्तेमालु इहो ई हूंदो आहे तव्हांखे दवा इन तरीक़े सां इस्तेमालु करणु घुरिजे ऐं हमेशह दवा पी ऐं चङी तरह ढकिड़ो बंदि करणु खपे। ऐं ॿी ॻाल्हि त कहिड़ी बि चाहे मेडिकल जी टेबलेट हुजे या चाहे होम्योपैथिक जी टेबलेट हुजे उनखे कॾहिं बि हथ ते लाहे ऐं उहा तव्हां वात में न विझंदा कयो छो जो हथ में घणा जरासीम हूंदा आहिनि। उहा डायरेक्टली तव्हां पते मां या यानी डबी मां ज़बान ते रखी ऐं पाणी पी सघो था या ढकिणे ते लाहे करे गोरी ऐं ज़बान ते रखी त इहो हिकिड़ो यानी तव्हांखे असां सिस्टम्स तरीक़ो ॿुधायोसीं जंहिंसां तव्हांखे जेको आहे सो को नुक़सानु कोन थींदो ऐं वणंदो जेको आहे सो फ़ाइदो थी सघे थो। ऐं हमेशह दवा जॾहिं बि कंहिं बि मेडिकल स्टोर तव्हां किथां बि वठो त उनजी एक्सपायरी ज़रूरु जेको आहे सो नोट कंदा छो एक्सपायर मेडिसिन्स बि अव्हांखे नुक़सानु पहुचाए सघे थी। वॾी महिरबानी
0: सर। वक़्त जो अहसासु आख़िर में सर कहिड़ो रिस्पॉन्स खे पैगाम ॾियणु चाहींदा
1: जंहिं सां असांजो वक़्त जो अहसासु थिए थो लेकिन असांजी त दिलि चवे थी त अञा पैसो वेहिजे ऐं पेशेंट सां ॻाल्हाए पर वक़्त जो अहसासु वारे खे ई ख़बर हूंदी आहे।
0: बिल्कुलु
1: सो हिनजे करे उन्हनि दोस्तनि खे हिन प्रोग्राम जे तवसो सां मशवरो इहो ई ॾींदा आहियूं त जेको आहे सो यानी ॾिसो सफ़ाई ऐं निसफ़ ईमान आहे। हमेशह हैंडवॉश करे ज़रूरु जेको आहे जॾहिं बि तव्हां मानी खाओ या जॾहिं बि तव्हां पाखाने मां थी अचा त अचो चङी तरह ॿ दफ़ा हथ ज़रूरु वॉश कंदा करियो ऐं जॾहिं बि मानी खाओ त हथ साबुण सां धोई करे ऐं पोइ जेको आहे सो खाईंदा कयो ऐं नह ज़रूरु लाहींदा कयो तकरीबन 15 ॾींहं 20 ॾींहं जेको आहे सो तव्हांजा नह ज़रूरु छो जो नहनि में जॾहिं मिटीअ जा ज़रात पइजी था वञनि त उन में हज़ारे जरासीम अची वेंदा आहिनि जेके तव्हां खाधो खाओ था उहे तव्हां सां गॾु मुंहं में उन बैक्टेरिया उहे मुंहं में जेको आहे वात में खाधे सां गॾु हलिया वञनि था त उहे अव्हांजे पेट जा जेके बि तव्हां ॾिसो अॼुकल्ह पेट जूं बीमारियूं आहिनि तकलीफ़ आहिनि इहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी इन नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ग़लतियुनि जे करे बि जेको आहे टाइम तमामु थोरो आहे सो पछाड़ी में दुआ में ज़रूरु यादि रखिजो। वॾी महिरबानी।
0: असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो बि वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी त पहुतो ऐं ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एहसान अली सियाल खे। अल्लाह हाफिज़।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वजीर आजम मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जो नोटिस वरतो, कहीं भी इलाके में बिन कलाकन का वधिक लोड शेडिंग न करने की हिदायत. बिजली की लोड मैनेजमेंट से जायजा इजलास दौरान शहबाज शरीफ बिजली की लोड शेडिंग से कावड़ जो इजहार कंदे चयो त कहीं भी इलाके में बिन कलाकन का वधिक लोड शेडिंग न कई वजे. सिंध असेंबली के मेंबर्स जो सिंध में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ एहतजाज. स्पीकर अवेस कादिर शाह समूरन बिजली कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के 23 सेप्टेम्बर से कमेटी इजलास में घुराने की हिदायत कर छी. सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन तो लोड शेडिंग पानी बिजली वाली वजारत की नाअहली पाकिस्तान में गवर्नेंस की नाकामी जो आला तरीन मिसाल है. हेस्को सेपको ए के इलेक्ट्रिक जड़ा इदारा आवाम के बुनियादी सहूलतू दियण में नाकाम चुका है. सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वे थी. यो मसलो कौमी असेंबली ए सेनेट में भी भरपूर अंदाज में उथारो वे. रुगो बिजली न पर अवाम के गैस ए पानी जहा मसला भी दरपेश आन. स्पीकर बिजली कंपनीज के सरबराहन के घुराने की हिदायत कन्दे घरू वजीर के इन अमलदार न आया तो अवे तकलीफ दींदी.

0: महांगाई सटियल अवाम मथां अॼु बि पेट्रोल बम किराइण जूं तयारियूं। ईंदड़ टिनि ॾींहनि लाइ डीज़ल 5.28 रुपया ऐं पेट्रोल 5.02 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां अॼु राति 9 अघनि जो नोटिफिकेशन जारी थींदो। ज़रियनि जो चवण आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि जो तइन सूमर ॾींहं ताईं लाइ कयो वेंदो।
1: कौल हक ने आखिरी तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि जो नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है। उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक सूबा उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में 2/3 एक्सेप्ट के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजोरिटी से कोई सूबा उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
0: सूबन की सरहदन बाबत कौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सके। तरमीम लाइ सूबाई असेंबली में 2/3 की अक्सरियत जरूरी है। जियाउल हक 8 तरमीम जरिए आईन के तब्दील कयो हो जैके दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबन की सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके। सदर भी तरमीम ते सूबे की मंजूरी बिना सही नथो करे सके। कराची में मीडिया से गालाइंदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो तो जेकडे कौमी असेंबली सिंध के विरांगे बाबत को ठहराव मंजूर कयो तो सिंध असेंबली पहिरें ही अड़ी ठहराव के रद्द कर चुकी है। सिंध के मानून भी पैंजो फैसलो बुधाए छड्यो ऐं असां सिंध के अवाम से गड बीठल आहियूं।

टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटताई रेंजर्स जे कार्रवाइनि जो नतीजो आहे। पाबंदी मंडल तनज़ीमनि जूं सरगर्मियूं ऐं रूपोश जवाबदार सिक्योरिटी लाइ ख़तरो आहिनि। अमन अमान अवाम जी जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ लाइ रेंजर्स जी मौजूदगी तमामु ज़रूरी आहे। सिंध असेंबली रेंजर्स जे सूबे में मुक़ररी वारे मुदे में हिकु साल जे वाद जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियादनि ते थींदड़ ऑपरेशन्स में अहम किरदार अदा कयो। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 20 जुलाई 2027 ताईं रेंजर्स मुक़रर रहंदी।

0: आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए। और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509,
1: 03000 510509। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इर्शाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इर्शाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03000338569।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आइन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वींदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लए 0301-2196-851।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: जी जान तारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
1: के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम।

Milk Rice Beauty Show ऐं Milk Rice Beauty Show प्रोग्राम ॿुधंदड़नि तमामु सभिनी दिलबरनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।

खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले। मिल्क राइस ब्यूटी शो प्रोग्राम के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मेहराबपुर। जी तो प्रोग्राम में म्यूजिक भी होता है, मोहब्बत भी होती है, प्यार भी होता है, आपकी कॉल्स भी होती हैं और हमारी प्रोडक्ट के हवाले से बातचीत भी होती है। पिछले जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए उन सब में जो है कि आपकी पार्टिसिपेशन जितनी भी रही वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन जो है कि हम आपसे और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जितनी ज़्यादा हमारे लिए फीडबैक और कॉलिंग आएंगी प्रोडक्ट के हवाले से और प्रोग्राम के हवाले से हमें खुशी होगी। मिल्क राइस की प्रोडक्ट के हवाले से बताता चलूं कि मिल्क राइस की प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट्स शामिल हैं, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम और मिल्क राइस विटामिन सी। और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके अपने शहर मेहराबपुर के अच्छे जाने माने जनरल स्टोर्स पर। खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर, फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर और अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर।

जी तो दोस्तों, हम चलेंगे धमाल की तरफ। खूबसूरत धमाल मुख्तियार शीदी की आवाज़ में, और उसके बाद वापस आके आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और आपके टेक्स्ट मैसेजेस भी शामिल करेंगे और आपको आज की रिडल पहली भी देंगे।

वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क चॉइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GAFM 94 मेहरापुर। खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले, मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शामिल है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्ने क्रीम। और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके अपने शहर मेहरापुर के तमाम अच्छे बड़े जनरल स्टोर्स पर। जिन जनरल स्टोर्स पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है उनमें से खुशी जनरल स्टोर मेहरापुर, फैजान जनरल स्टोर मेहरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफीज जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर, अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर।

0: जी अदा केर के तां गायक बेरो बीहर नालो पेंजो बुदा जो थरी मीर वाह खां वेलकम बरी कार प्यारा केड़ा हालन खुश है अल्लाह जा एहसान प्रोग्राम बुधी रहे आओ जवाब नोट कर इन में घट वध हुंदी त पो उ अवां के आखिर में प्रोग्राम जे आखिर में बुधाईंदासे छा का फरमाइश को दोस्तन जा नाम शामिल करना चाहिदो
1: प्रोग्रामयो फरमाइश मंता मलायो गानो बुधायो ने
0: जी
1: आई इन वाला मजा पुत्र बुधिरान ने इमरान अली रिजवान अली
0: जी जी
1: सबनी का सलाम
0: है बड़ी मेहरबानी वालेकुम सलाम अवां जी सजी संगत के अवां जे बचड़न के सलाम जी तो ठरी मीर वाह असा गुड कॉलर हो मौजूद है रिप्लाई दिनों रिप्लाई आखिर में असि आंसर डींदा जो सवाल अस कूँ उन राइट आंसर जो हों आखिर में बुधाऊँ जेतरा खुश नसीब शामिल थी सकन उन में जद का ज्यादा थी वन तो अस लकी ड्रॉ के थ्रू उन नालो अनाउंस कदा लिमिटेड कॉलर्स हूँ तो उन्होंने बिन टिन के अस गिफ्ट डींदा आयो जी त अवां अजोको सवाल बुधो त असांजी मिल्क राइस जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं प्रोडक्ट्स आहिनि उहो अवां रिप्लाई ॾींदो असांजे लाइव कॉलिंग नंबर ते ऐं लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-931-9667 ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अवांखे असांजी प्रोडक्ट परचेस करणी आहे का बि प्रोडक्ट त उन लाइ अव्हांखे पंहिंजे शहर जे वॾनि तमामु वॾनि जनरल स्टोर्स ते असांजी प्रोडक्ट मिली वेंदी उन जनरल स्टोर्स में शामिलु आहिनि ख़ुशी जनरल स्टोर महराबपुर फैज़ान जनरल स्टोर महराबपुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर महराबपुर हफीज़ जनरल स्टोर महराबपुर कोहरी जनरल स्टोर महराबपुर जावेद जनरल स्टोर महराबपुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर महराबपुर ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां कंहिं ॿिए जनरल स्टोर ते अवेलेबिलिटी कराइणु चाहियो था त पोइ अव्हांखे असांजी हेल्पलाइन ते कॉल करणी पवंदी लेकिन हिन वक़्तु असां सां गॾु हिकिड़ो कॉलर मौजूदु आहे असां प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासीं वालेकुम सलाम केर अदा किथां खां
2: जबार खान ते बि ॻाल्हायां सिमन हाले खां
0: साईं मुंहिंजा वेलकम भलीकार ख़ुश आमदीद वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी कंहिंजे मुतालिक़ प्रोग्राम आहे का ॼाण आहे थोरी घणी कॾहिं खां ॿुधो पिया छाजे बारे में कहिड़े हवाले सां प्रोग्राम आहे नालो विसरी वियो त अॼु को सवाल बि अव्हां खे यकीन विसरियल हूंदो अॼु सवाल कहिड़ो पुछा कयो आहे असां जंहिं मुतालिक़ रिप्लाई ॾींदव त पोइ थी सघे थो अव्हां इनाम जा हक़दार बि थियो त जी जी हा छा आहे हुन जो जवाबु जवाब कोन थो अचे अवां प्रोग्राम ठीक सां ॿुधो कोन पिया सवाल असां ॿुधायूं था अव्हांखे असांजो प्रोग्राम आहे मिल्क राइस ब्यूटी शो ब्यूटी क्रीम ऐं ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि असांजी कंपनी वटि ऐं उहे प्रोडक्ट कहिड़ियूं कहिड़ियूं इहो सवाल जेको आहे प्रोग्राम ॿुधंदा रहो नालो बि यादि थी वेंदो ऐं अव्हांजी अॼुकल्ह अगेन लॻी त ठीकु न त पोइ सुभाणे अव्हां शामिल थी सघंदो प्रोग्राम में को दोस्तनि जा नाम शामिलु करणु चाहींदो ऐं प्रोडक्ट विज़िट कंदव न अव्हां असांखे जनरल स्टोर अव्हां असांखे जेके एड्रेस ॾिनी आहे बैरापुर में उन्हनि तमामु जनरल स्टोर ते मिल्क राइस जूं प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि अव्हां वेंदो त अव्हांखे हर क़िस्म जी प्रोडक्ट उते साम्हूं रखंदा ऐं तव्हांजे फ़ाइदेमंद प्रोडक्ट्स आहिनि जी जी ख़ुशी यार ते चकर लॻायो या फैज़ान ते कामरान ते हफ़ीज़ ते कोरीअ ते जावेद ते याल करम ते तव्हां चकर लॻायो जी जी जी प्रोग्राम ॿुधंदा रहो अव्हांजी फरमाइश पूरी कबी ठीक है भा, वरी महरबानी, गुरब, लव यू, लक लाइक, थैंक यू।

जी त दोस्तों अॼु मैरापुर वारा जोश ऐं जज़्बे ऐं वलवले में नज़र अचनि था. असांखे कंटिन्यूसली जो हिकु कॉलिंग ऐं जेको आहे टेक्स्ट मैसेजिस मौसूल थी रहिया आहिनि. हिन वक़्तु असां अव्हां लाइ हिकु ख़ूबसूरत म्यूज़िकल ट्रैक प्ले कंदासीं ऐं उनखां पोइ वरी वापसि फिरंदासीं ऐं अॼोके सवाल जे हवाले सां अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं.

0: वेलकम बैक एकड़ो कॉलर असन सगन हन कॉल शामिल कंदा से प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा खां हेलो केर दा किथा खां
1: लाल
0: मोहम्मद मल्लाह मेरापुर खां भाव प्रोग्राम में वेलकम भलीकार खुशामदीद
1: सरवाडी मेहरबानी पर त कर प्रोग्राम में शामिल थाउ कॉल कया
0: ए बुधो करे खां पया रिप्लाई जवाब आए को खबर चार नोट करे छूं था एक भेरो पंहिंजो नालो बीहर ॿुधाइजो ऐं जेको आहे त शहर
1: सर मेरापुर खां लाल मोहम्मद मल्लाह
0: लाल मोहम्मद मल्लाह मेरापुर खां ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ अवां जो रिप्लाई शामिल करे छॾियूं था आंसर आख़िर में प्रोग्राम ॿुधाइजो रहिजो आख़िर में जेको राइट आंसर उहो असां ॾींदासीं पोइ जंहिंजो बि हूंदो उहो मुस्तहिक़ हूंदो इनाम जो ऐं शामिलु कंदासीं अव्हां खे पंहिंजे ड्रॉ में छा कुझु दोस्तनि जा नाम शामिलु करणु चाहींदो या को फरमाइश करणु चाहींदो
1: सर फरमाइश सां जलाल चांडे जो को बि सुठो सांग तव्हां पंहिंजे पसंदि ते असांखे ॿुधाए छॾियो ॿियो जेके बि मतिलबु मेरापुर एफएम जा ॿियूं जेके बि एफएम ॿुधी रहिया आहिनि सभिनी भाउरनि भेनरुनि खे मुंहिंजा घणे मां घणा सलाम
0: वालेकुम सलाम
1: ऐं कुझु दोस्तान वकार अली मल्लाह मेरापुर खां मूं सां गॾु आहे मुंहिंजो भाण जो यामीन अहमद मल्लाह ॿिया जेके बि मुंहिंजा दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि हिन वटि अवेल रहिया आहिनि सभिनी खे सलाम चवंदासीं
0: वालेकुम सलाम मुंहिंजा बि सॼी संगत खे अव्हां जी सॼी संगत खे सलाम वॾी महिरबानी प्यारा प्रोग्राम ॿुधंदा रहो थैंक यू
1: सो मच वेरी महिरबानी

0: किताबनि में शामिल आहे त पैसो लधुमि पट तां, पैसे वरितुमि गाह, गाह ॾिनुमि मेंहिं खे, मेंहिं ॾिनो खीरु, ऐं खीरु ॾिनुमि अमड़ खे, अमड़ ॾिनो लोलो, लोलो ॾिनुमि कांव खे, कांव ॾिनो खंभ, खंभ ॾिनुमि राजा खे, ऐं राजा ॾिनो घोड़ो चढ़ी गुम। सो केॾी प्यारी स्टोरी आहे कंहिं नाम जे करे, त पोइ एॾी मोहबत आहे त मोटरसाइकिल ज़रूरी न हूंदी आहे। असांजी प्रोडक्ट हूंदी अवां लाइ इनाम में, अवां रिप्लाई ॾियो ऐं असांजी प्रोडक्ट मज़ा का हिकु आइटम हूंदो। ऐं अॼोको सवाल बि इहो ई आहे त असां जूं केतिरियूं प्रोडक्ट आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी जूं? तव्हांजो ॿिए जो बि थी थो सघे, मतिलबु रिप्लाई ॾियो। सवाल इहो ई आहे मुंहिंजा भाउ त असांजूं प्रोडक्ट्स केतिरियूं आहिनि मिल्क राइस जूं?
1: प्रोडक्ट सर टे आहिनि।
0: टे आहिनि, नाला खणंदो? कॉल ड्रॉप थी वई अदा, अवां जॾहिं पक ॾिनी न, सो इहो जेको आहे ओवर कॉन्फिडेंस असांखे माराए छॾींदो आहे।

असांजो रेग्यूलर कॉलर आबिद हुसैन शंबाणी असां सां उन तमीद बधे ॻाल्हि ॿोल कई, असां उन्हनि खां क्वेश्चन पुछा कयोसीं, पर बैड लक उन्हनि जो, उन्हनि खे रिप्लाई डेफिनेटली थी सघे थो ईंदो हुजे ऐं ईंदो हूंदो। रेग्यूलर असांजा लिसनर आहिनि, थी सघे थो उन्हनि जी अगेन कॉल कनेक्ट थी वञे त उन्हनि सां ॿीहर ॻाल्हि ॿोल थी वेंदी। उन्हनि पक ॾिनी त इनाम मुंहिंजो आहे ऐं कॉल ड्रॉप थी वई। ॾिसो, इनाम जे लाइ मूं अॻ में बि अर्ज़ु रखियो त इनाम खटणु जेको आहे न, उहो ख़ुशी जो इज़हार हूंदो आहे। इनाम नंढो या वॾो न हूंदो आहे। सो इन करे इहो पुछणु अजायो आहे त उन में ट्रक आहे, गाॾी आहे, कार आहे, इनाम असांजी प्रोडक्ट ई आहे। उन प्रोडक्ट में जाम मूंखे इस्तेमाल लाइ असां तव्हांखे गिफ्ट कंदासीं त पोइ तव्हां इस्तेमालु कंदव त उन खां पोइ तव्हां पाण बि वठंदव डेफिनेटली, छाकाणि त असां इहो मुख़्तलिफ़ प्रोडक्ट्स आहिनि। ऐं जेको सवालु इहो आहे त केतिरियूं प्रोडक्ट्स आहिनि, असां सां गॾु कॉलर आहे मौजूदु, कॉल अटेंड कंदासीं। कॉल ड्रॉप थी वई। सो असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300 931 9667।

जी लगे तो त इनाम जो मजो हाँ जो अचण वो है अची रो है त इनाम नंढो वो ना इनाम जो इनाम हों खुशी जो मोहब्बत जो इजहार हों कंपनी जैसे कुछ डे थी तो डेफिनेटली उन फीडबैक उनको अवे इस्तेमाल जो है इस्तेमाल का रिप्लाई असा फीडबैक लाजमी खपे।

जी दोस्तों, लाइव कॉलिंग जो सिलसिलो जारी आहे, असां सां गॾु हिकिड़ो कॉलर मौजूदु आहे, कॉल अटेंड कंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां? आबिद शंभाणी, अवां सां ॻाल्हि ॿोल थी चुकी, पर हा, अवां रिप्लाई कोन ॾिनो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीकु आहे, अवां पंहिंजो जवाबु रिप्लाई नोट करे कराए छॾियो। जी जी, एक्नी क्रीम, इन्हनि मज़ा अवां इस्तेमालु कहिड़ी कई आहे? इस्तेमालु कॾहिं कंदो? इस्तेमालु कॾहिं कंदो? गिफ्ट गिफ्ट त इन्हनि मज़ा का हिकिड़ी मिलंदी, ॿी अव्हांखे परचेज करणी पवंदी, ईअं न भाउ? अव्हांखे वञिणो पवंदो, पंधु करणो पवंदो। असां जेकॾहिं जवाबु अव्हांजो राइट आहे, आख़िर में अनाउंस थींदो, जेकॾहिं कॉलर्स वधी आहे त पोइ ड्रॉ में बि शामिलु थींदो मुंहिंजा भाउ। अव्हांखे असां एड्रेस ॾींदासीं, नालो नोट करे छॾियो आहे, नंबर बि, ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ? गिफ्ट मिली वेंदो, थैंक यू भाउ।

0: जी दोस्तों वधंदासे एक खूबसूरत ट्रैक ॾांहुं ऐं ट्रैक आहे जलाल चांडियो जी खूबसूरत आवाज़ में माणा छॾे मूंसां मिल वो पहिरीं यार मुंहिंजा प्यारा
1: और की महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नतीजे देखें सिर्फ 3 दिन में एक

मिठा थी मजबूर थो अब्दुल गफूर अर्ज करे। दोस्तों जरा उन जो आज जो महबूब ईद ते ना आयो तजा उनके केड़ी मिंथ करें घुराए पियो पान वट छा पियो चेस ओ

आप सुन रहे हैं मिल्क राइस ब्यूटी शो और मैं हूं आबिद चौहान। खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले। मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शामिल है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। और ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके अपने शहर मैरापुर के बड़े जनरल स्टोर्स पर। खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर और अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर।

0: जी हमारे साथ कॉलर है मौजूद लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं किथा का केयर पे गला है सर?
1: हुसैन
0: बग सियाल साहब, वेलकम बलिकार, वेलकम बलिकार, खुश आमदीद। लगभग जो लकी है लास्ट कॉलर आयोजन टाइम पुजाने से पौतो है चवण चाहिए तो प्रोग्राम के हवा से जो सवाल है जो
1: बिल्कुल साईं तवाज प्रोग्राम तो हमेशा जी मैं चाहूँ तो हाँ माशाला बेहतरीन प्रोग्राम आ बेहतरीन तवाज कलेक्शन आ बेहतरीन तवाज सुठो अंदाज आ
0: असोडक्ट के हवा से मल तो को भी फीडबैक ना आया रेगुलर असो प्रोग्राम बुध पाया जी अमाजो आंसर असा नोट करे छियो है बस थोड़ी देर में असा अनाउंस कंदासी बकाया बे भी जेन दोस्तन पार्टिसिपेट किया या कमेंट किया या कॉल किया वे भी शामिल कंदासी बियो को सलाम को दुआ को न्यापो को पैगाम
1: हां सर बिल्कुल इनको अर्ज़ा को देर से पर जो फर्क हो जे माफ कर दियो
0: बाकी ना ठीक है इते सबक ना है कोई स्कूल में
1: वालेकुम
0: सलाम थैंक यू पैरा लव यू लख लाइक बड़ी मेहरबानी।

जी दोस्तों, त पोइ अॼोको प्रोग्राम लॻभॻि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे। असांजे मिल्क राइस ब्यूटी शो में अॼु ख़ूबसूरत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी आहे दोस्तनि जी कॉलिंग जी, टेक्स्ट मैसेजिस जी, ऐं जिन जिन आंसर ॾिना आहिनि उहे पंहिंजे प्रोग्राम में असां शामिलु करे छॾिया आहिनि। उन्हनि जा नंबर बि नोट कया आहिनि, उन्हनि जा नाला बि लिखी छॾिया आहिनि। असां उहे जेको आहे त उमाणे छॾींदासीं मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिबु ऐं एम सिद्दीक साहिबु ॾांहुं, जेके उन्हनि सां राबितो कंदा, ऐं राइट आंसर ॾियण वारे खे इनाम पिणु ॾिनो वेंदो। मिल्क राइस ब्यूटी ख़ूबसूरती जो नज़र आहे, भरोसा जो दिल जीत ले। असांजो जेके प्रोडक्ट्स आहिनि मिल्क राइस जूं, उहे त अव्हां बि रिप्लाई ॾिनो, असां बि बार बार अनाउंसमेंट में अव्हां खे ॿुधाए रहिया आहियूं। अव्हांजो फीडबैक असांजे लाइ काफ़ी जेको आहे त अहमियत रखे थो पियो। सो अव्हां पंहिंजे फीडबैक लाइ मिल्क राइस जूं ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमालु लाज़मी कयो। इस्तेमाल खां पोइ वारो फीडबैक अञा उहो असां लाइ वधीक कारामद साबित थींदो। असांजूं प्रोडक्ट्स मिल्क राइस जूं प्रोडक्ट्स अव्हां खे जिन मेडिकल जिन जनरल स्टोर्स ते मिलंदियूं उन्हनि मंझां ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहिनि। इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां कंहिं बि जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट अवेलेबल कराइणु चाहियो था, त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर मिलाइणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 03003105109। इन ते कॉल करे अव्हां राबितो कंदव मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक साहब सां। इन सां गॾु अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे। पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा ऐं म्यूज़िकल ट्रैक इंजॉय कंदा। सिंध सलामत, साध सलामत, अलाह निगेबान।

वज़ीर आज़म मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जो नोटिस वरतो, कें भी इलाके में बिन कलाकन का वधीक लोड शेडिंग न करने की हिदायत। बिजली के लोड मैनेजमेंट से जायजा इजलास दौरान शहबाज शरीफ बिजली की लोड शेडिंग से कावड़ जो इजहार कंदे चयो त कें भी इलाके में बिन कलाकन का वधीक लोड शेडिंग न कई वे। सिंध असेंबली के मेंबर्स जो सिंध में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ एहतजाज। स्पीकर अवेस कादर शाह समूरन बिजली कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के 23 सितंबर से कमेटी इजलास में घुराने की हिदायत कर छी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन तो लोड शेडिंग पानी बिजली वजारत की नाअहली ए पाकिस्तान में गवर्नेंस की नाकामी जो आला तरीन मिसाल है। हेस्को सेपको ए के इलेक्ट्रिक जड़ा इदारा अवाम के बुनियादी सहूलतू दियण में नाकाम चुका। सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वे थी। यो मसलो कौमी असेंबली ए सेनेट में भी भरपूर अंदाज में उथारो वे। रुगो बिजली न पर अवाम के गैस ए पानी जहा मसला भी दरपेश आन। स्पीकर बिजली कंपनीज के सरबराहन के घुराने की हिदायत कदे घरू वजीर के उनते अमल दरामंद अमलदार न आया तो अवे तकलीफ दींदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करण वाली सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द कर छी। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एग्जेविस मूजिब सऊदी वलीअद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन से राबतो कर हुसैन खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जेका ट्रंप रद्द कर छी। ट्रंप इंतजामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो ना है। यमनी हुसैन पारा सामुंडी गुजरगाह बाबुल मदब से कब्जो करण की दापार में वही रंडक पैदा थे खदशो। यमनी हुसैन मौजे बाबुल मदब वेझो अल अमीरी फौजी अडे ए जकर बेट से कंट्रोल करे वरतो है। हाने बाबुल मदब के बंद करण जो अख्तियार भी हुसैन वटा है।

अमरीकी सदर ईरान जंग पंज सदारती दौर में खत्म थियण लाइ पुरो में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुदे ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे।

पीटीआई जमियत उलमा इस्लाम के 27 सितंबर वाली लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे छी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की क्यादत में पीटीआई वफद की जेयूए सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27 सितंबर वाली मार्च कानून की हुक्मरानी आइन की बालादस्ती तहरीक तहफुज आइन पाकिस्तान पारा एपीसी कोठण के ख्याल की डे वट। बैरिस्टर गोहर 27 सितंबर वो एहतजाज मुलतवी करण की का भी तजवीज गौर हेठ ना है। नई वरी हुकूमत से के गाल एहतजाज की क्यादत सुहेल आफरीदी कंदो जैमें सब सियासी पार्टियों शिरकत कंदू। घरू वजीर मोहसन नकवी सा बैकडोर चैनल्स से राबतो रहंदो आहे। तफसील नथा बुधाए सजन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो चवण हो तो मुलाकात दौरान नवन सूबन के क्याम एपीसी समेत मुख्तलिफ मामलों से गालबोल थी आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 27 सितंबर से ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त बुधनी एडवोकेट जनरल केपी दरख्वास्त की मुखालफत कर छी। पीटीआई ए केपी के वे वजीर के धुर बढ़ाने की इस्तदा चीफ जस्टिस सरफराज रोगर जो केपी के चीफ सेक्रेटरी आईजी के हल्फी बयान जमा कराने के हुक्म।

टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटिताई रेंजर्स जे कार्रवाइनि जो नतीजो आहे। पाबंदी मरियल तनज़ीमनि जूं सरगर्मियूं ऐं रूपोश जवाबदार सिक्योरिटी लाइ ख़तरो आहिनि। अमुन अवाम जी जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ लाइ रेंजर्स जी मौजूदगी ज़रूरी आहे। सिंध असेंबली रेंजर्स जी सूबे में मुक़ररी वारे मुदे में हिकु साल जी वाधि जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियादनि ते थींदड़ ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कयो आहे। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 19 जुलाई 2027 ताईं रेंजर्स मुक़रर रहंदी। सिटी काउंसिल कराची सिंध में नवा इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। मेंबर्स चयो त सिंध हिकु हुई, हिकु आहे ऐं हमेशा हिकु ई रहंदी। ॿोली जे बुनियाद ते नफ़रतुनि खे हथी न ॾिनी वेंदी। कराची खे सूबो ठाहिण ऐं इंतज़ामी यूनिट्स जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जो माज़ी लसानी बुनियादनि ते ॿधल आहे। जमात इस्लामी जे मेंबरनि जो ज़मीननि जे मामले ते एहतजाज, डेस्क ते बीह नारेबाज़ी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ऐं डेप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद इजलास छॾे रवाना थी विया। मुर्तज़ा वहाब जो चवण हो त ॿुधायो वञे त नूरुल हक़ इदारो कंहिंजी ज़मीन ते ठहियल आहे। हीअ उहा मुनाफ़िकत आहे जंहिं ख़िलाफ़ आहियां। मुनाफ़िकत खे वाइको कयो वेंदो।

0: क़ौमी अवामी तहरीक पारां सिंध विरहाइण जी साज़िश ख़िलाफ़ मोहबत सिंध रैलियूं कढण जो ऐलान। अयाज़ लतीफ़ पलीजो जी सदारत हेठि क़ौमी अवामी तहरीक जे स्टैंडिंग कमेटीअ जो इजलास। इजलास में सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ साज़िशनि ऐं सिंध जे वसीलनि बाबति मामलनि ते गौर वीचार कयो वियो। 20 सेप्टेम्बर ते सांगड़, 26 सेप्टेम्बर ते बदीन ऐं 4 अक्टूबर ते ठठे में रैलियूं कढण जो ऐलान। अयाज़ लतीफ़ चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध जी वहदत बाबति बहस कराइण बदिरां सिंध खे पाणी न मिलण ते बहस कराए। सिंध में मोटरवे छो नथो ठारायो वञे, टकराव बदिरां जोड़ण जूं ॻाल्हियूं थियण घुर्जनि। नवनि सूबनि या इंतज़ामी यूनिटनि जे नाले में सिंध जो विरहाङो क़बूल नाहे।
1: मोहसिन नकवी अवामी नुमाइंदो आहे कोन, मोहसिन नकवीअ जी पंहिंजी इहा केपेबिलिटी कोन्हे त हू यूनियन काउंसिल जो चेयरमैन थी सघे। छापियल सीट ते सेनेट आहे, मुल्क जे वसाइल ते कब्ज़े करण जी मनसूबाबंदी आहे।
0: मोहसिन नकवीअ जी का बि ज़ाती हैसियत नाहे, हू न चूंडियल नुमाइंदो आहे ऐं न ई का यूसी खटण जी अहलियत रखे थो। जे यू आई सिंध जे जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सूमरो मटियारीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सिंध हिन वक़्तु साज़िशनि ऐं मसइलनि जे वरचड़ियल आहे। सूबनि बाबति बयान वसीलनि ते कब्ज़े जी रिथाबंदी सम्झूं था। महांगाई सटियल अवाम मथां अॼु बि पेट्रोल बम किराइण जूं तयारियूं। ईंदड़ टिनि ॾींहनि लाइ डीज़ल 5.28 रुपया ऐं पेट्रोल 5.02 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां अॼु राति 9 अघनि जो नोटिफिकेशन जारी थींदो। ज़रियनि जो चवणु आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि जो तइन सूमर ॾींहं ताईं हूंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो ज़रियो आहिनि, उते सुठी खुराक ढोरनि जी ज़रूरत आहे।
4: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
7: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000310509, 03000310509।
8: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप 1.5, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014531456 ऐं तौकीर अहमद 03601623793।
9: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद। ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

वेलकम बलिकार दिलजीगाल प्रोग्राम संगत अब चौहान अवाजी खिदमत में हाजिर है अवासा खोर सारियों कचहरियों कबियों दिल जो गालियों कबियों उनसा गरोगर अवाजू फरमाइशों भी प्रोग्राम में शामिल कबियों असा अवाजी कॉल जो भी इंतजार करता हूं अवाजू कॉल जो शिकायतों होंदियों तो कॉल अटेंड नाहे कई वेंदी या तो कॉल अटेंड घट कई वेंदी आहे सो उन जो रिप्लाई यो ही आहे ता असा पान मुंतजर हूं अवाजी कॉलिंग जा अवाजी कॉल का बिना असा प्रोग्राम अधूरो आहे हा फकत असा अवां सा पहिरियां 15 मिंट मुखातिब थींदा आहियूं जंहिंमें प्यार भरी पोएट्री अवां दोस्त बि उमाणे सघो था असांखे जेकॾहिं पंहिंजी पसंदि जी चूंड पोएट्री या को शायर दोस्त हज़रात जेकॾहिं ॿुधी रहिया आहिनि असांजो प्रोग्राम त उहो असांखे SMS वसीले पिणु जेको आहे त शायरी मोकिले सघनि था उन सां गॾो गॾु असांजे लाइव कॉल ते पाण बराह रास्त ख़ुदि जेको आहे त उहा पंहिंजी शायरी असांखे प्रोग्राम में शामिलु करे सघनि था

प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत ट्रैक से करेंगे और वो ट्रैक है पाकिस्तान के जाने माने सिंगर अली जफर का और बहुत ही सुरूर दिल को छू लेने वाला ट्रैक। आओ मिलके एंजॉय करें दिल की बात में अली जफर का खूबसूरत गीत।

0: वेलकम बैक। इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना, इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना, दर्द दरिया के किनारे तो नहीं होते ना। इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना, दर्द दरिया के किनारे तो नहीं होते ना। रंजिशें हिजर का मयार घटा देती हैं, रंजिशें हिजर का मयार घटा देती हैं, रूठ जाने से गुजारे तो नहीं होते ना। रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को, रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को, वो भी अर्श से उतारे तो नहीं होते ना। होंठ सीने से कहां बात छुपती रहती है, होंठ सीने से कहां बात छुपी रहती है, बंद आंखों से इशारे तो नहीं होते ना। हिजर तो मोहब्बत को और बढ़ा देता है, अब मोहब्बत में खसारे तो नहीं होते ना। एक शख्स ही होता है मताए जाने भी दिल में, एक शख्स ही होता है मताए जाने भी दिल में, अब लोग भी सारे तो नहीं होते ना। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सुनते रहें GAFM नेटवर्क।
1: It's 9th.
2: पीउ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध आई वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार, 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो, हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे, मा हाणे ही थो वठी अचा।
5: जीजान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।
8: 0909
9: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
10: सु-

Quer sair que tava. Hello.